अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: भगवान की,
1: जय
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की,
1: जय
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की,
1: जय
0: श्री चारो भैया की,
1: जय
0: श्री हनुमान जी महाराज की,
1: जय
0: श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, ओ स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 26वां जत्था सुबह तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किया गया। 46 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 1000 से अधिक तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 832 पुरुष, 205 महिलाएं, 2 बालक, 15 साधु, 2 साध्वी शामिल है। 1056 तीर्थ यात्रियों पर मुश्तमिल यह जत्था जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त रवा दवा है, घाटी की ओर रवा दवा है। आपको याद दिलाते चले, तो आज जो है श्रावण सोमवार भी है। श्रावण सोमवार बाबा बर्फानी की पवित्र छाया में। आज का दिन जो है हर शुभ वक्त के लिए बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस महीने का हर सोमवार शिव भक्तों के लिए आस्था, भक्ति और तपस्या का प्रतीक होता है। इस वर्ष

2026 में श्रावण सोमवार के पवित्र अवसर पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा और भी जो है अधिक दिव्यता से भर जाती है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बना हिम शिवलिंग के दर्शन करने हर भक्त के जीवन के एक अनमोल अनुभव होता है। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति, श्रद्धा और विश्वास को पहचानने की यात्रा है। आप सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें यूट्यूब की आकाशवाणी की आराधना चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोतो, आज श्रावण सोमवार है और अमरनाथ यात्रा 2026। ये यात्रा श्रोताओं सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति, श्रद्धा और विश्वास को पहचानने की यात्रा है। श्रोताओं, हर कदम पर भक्त बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए कठिन पहाड़ी

रास्तों को पार करते हैं, कभी तेज़ बारिश, कभी ठंडी हवाएं और कभी कठिन चढ़ाई, लेकिन बाबा के दर्शन की इच्छा हर मुश्किल को जो है आसान बना देती है। श्रावण सोमवार का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि मान्यता है किस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। आज के दिन अनेक श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा बर्फानी के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा, ये पवित्र यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह तड़के यात्रा का 26वां जत्था श्रावण सोमवार के दिन पर घाटी की ओर रवाना किया गया। 46 छोटे बड़े वाहनों में 1056 तीर्थ यात्री इस वक्त घाटी की ओर रवाना दवा है। सभी तीर्थ यात्री बालतल के मार्ग से आज पवित्र गुफा की ओर छोड़े जाएंगे। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर किसी भी यात्री को जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं रहेगी आज। ताहम रुके पड़े सभी तीर्थ यात्रियों को और जम्मू से आ रहे नए शिव भक्तों को जो है श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक लिया जाएगा। पांथा चौक से होते हुए आप गांदरबल के रास्ते बालतल, दुमेल, ब्रारीमर्ग और संगम से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचाए जाएंगे। आप सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआईआर, आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा यूट्यूब पर आप आकाशवाणी की आराधना चैनल पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया। पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा यहाँ सुहाने मौसम के दरमियान रवाना होने का सिलसिला पहले निवास स्थान भगवती नगर से जारी है। तीर्थ यात्रा की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन जोश व खरोश बराबर जारी है। और आज भी भगवती नगर निवास स्थान से बाबा बर्फानी का काफिला घाटी की ओर रवाना हुआ। इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या आज कदरे कम देखी गई, जिसमें 1056 टोटल संख्या रही, जिसमें पुरुष 832, महिलाएं 205, बच्चे 2, साधु 15 और साध्वी 2 शामिल हैं। 46 वाहनों का ये काफिला यहाँ सुबह तड़के 2:30 बजे के करीब रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के जयकारों और उसी जोश खरोश के साथ बालटाल के मार्ग से होते हुए बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ ये काफिला यहाँ से रवाना हो गया। और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की जहाँ तक जानकारी है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से स्थिर है और बिल्कुल ठीक है, और उसको यात्रा को यकीनी और बेहतर बनाने के लिए, उसकी रवानगी को सुरक्षित बनाने के लिए हिफाजती घेरे में ये काफिला यहाँ से रवाना हुआ। वही श्री अमरनाथ जी की यात्रा

0: ये पर्व कम जरूर हुआ है, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। और इस श्रावण के महीने में शहर और आसपास के प्रमुख शिवालयों में बाबा बर्फानी की आराधना जारी है। सुबह से ही देर शाम तक श्रद्धालु मंदिरों में और स्थानीय लोग भी विशेष पूजाएं और अर्चनाएं कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और शहर में का वातावरण जो है वो बहुत ही बेहतर बना हुआ है। तो यहाँ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र भी है। और इस बीच इस खास तौर पर इस श्रावण मास में आज जो कि सोमवार है, पहला सोमवार है,
1: जी
0: तो इसमें खास तौर पर पूजा अर्चनाएं होती हैं। सुबह से ही यहाँ के मेन मंदिरों में, जिसमें खास तौर पर पंचवक्तार का मंदिर, रामेश्वर मंदिर, पीर खो मंदिर, यहाँ खास तौर पर स्थानीय लोगों की खासी भीड़ देखी जा सकती थी और अभी भी है। और ये शाम तक रहेगी क्योंकि आज सोमवार का जो मास है इसमें खास तौर पर पूजाएं होती है। और यहाँ भी भगवती नगर निवास स्थान में भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और पूरे शहर में इसी तरह का माहौल है।
1: जी
0: लोग अपनी तरफ से फूल अर्पित करते हैं इन पूजा अर्चनाओं में। तो इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए भी प्रशासन ने यहाँ के स्थानीय मंदिरों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं पहले की तरह मिल रही है। और खास तौर पर आज के दिन का महत्व, जो पहला सोमवार है,
1: जी
0: इसमें पूजा अर्चनाओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहाँ भी उसी हर्षोल्लास के साथ भगवती नगर निवास स्थान पर इसी तरह का जो माहौल है देखने को मिल रहा है। और यहाँ के परिसर में खास तौर पर जिस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है उससे जोश खरोश पूरी तरह से जारी है। और जो तीर्थ यात्रियों का सिलसिला है, क्योंकि वक्त ढलने के साथ
1: जी
0: तीर्थ यात्रियों का हमेशा से ही फिर संख्या जरूर कम होती है, लेकिन जोश और खरोश बराबर जारी रहता है।
1: बिल्कुल
0: इसीलिए आज भी लगातार जो है ये तीर्थ यात्रा बराबर अपने वक्त के हिसाब से ही निकलती है। और इस बीच जो प्रशासन है वो खास तौर पर इसी भगवती नगर निवास स्थान में तमाम तरह की सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। प्रबंधन जो किए जाते हैं और उनके लिए जो सुख सुविधाएं हैं यहाँ,
1: जी
0: उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। और यात्रा के दौरान मौसम के संबंधी सभी दिशा निर्देश का भी पालन करने की अपील की जाती है, ताकि यात्रा को न सिर्फ सुखद आरामदेह बनाया जाए बल्कि सुरक्षा के साथ बेहतर सुरक्षा एजेंसियों की जो एडवाइजरीज है उस पर
1: जी
0: अमल करके तीर्थ यात्रा को आसान भी बनाया जाए। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। और तीर्थयात्री भी पूरी तरह से इन सारी एडवाइजरीज पर अमल भी करते हैं। और यहाँ निवास स्थान से लगातार ये तीर्थ यात्रा का सिलसिला जारी है। जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थे जावेद मेहराब, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से। जैसा कि बता रहे थे कि पूरी जोश और उत्साह के साथ यात्रा जो है जारी है, और श्रावण सोमवार के मौके पर जो है जगह जगह पर मंदिरों में जो है आज खास जो है पूजा पाठ किया जाता है। और आज जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 26वां जत्था जो है घाटी की ओर पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है रवाना किया गया। संख्या हालांकि कम हो चुकी है, लेकिन शिव भक्त जो है पूरे जोश और उत्साह के साथ इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। और ये काफिला जो है इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवा दवा है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों को जो है, जो रुके पड़े तीर्थ यात्री थे कैंप्स में या श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में, पांथा चौक में, या नए जो अभी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी की ओर रवाना किए गए, सभी तीर्थ यात्रियों को जो है बैलटल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा, पवित्र गुफा की ओर छोड़ा जाएगा। वहाँ जो है इस श्रावण सोमवार के मौके पर सभी रथ यात्री आज शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। शिव जी से हमारी यही प्रार्थना, ईश्वर से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी शरण की सूचनाएं जो है आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं को बताते चले, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बिल्कुल ओपन है और अभी जो बालतल के रास्ते जम्मू से जो ट्रैफिक निकला है श्री अमरनाथ यात्रा का, तो उसका जो 47 गाड़ियों पर जो मुश्तमिल आज का काफिला है 756 यात्रियों के साथ, वो अभी बानहाल पहुंच चुका है। बानहाल के यात्रा ग्राउंड पर, तो जहां पर इनका नाश्ता वगैरह होगा और यहां से फिर इन्हें कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। जो पुलिस, जो ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम है, उनके मुताबिक अब तक जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो कश्मीर आने वाले श्री अमरनाथ यात्री हैं वो 1,40,000 से तजावुज कर गए। उससे ज्यादा यात्री अब तक भगवती नगर से रवाना किए गए हैं, जबकि कुल मिलाकर अब तक जो पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं तो उनकी तादाद 4,00,000 से ऊपर हो चुकी है, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। इस दौरान जो बालतल से वापस जम्मू की तरफ श्री अमरनाथ यात्रा जा रही है, इसमें 16 गाड़ियां शामिल हैं और 532 यात्रियों पर मुश्तमिल है यह काफिला, और यह भी अभी बानहाल की तरफ बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि आइंदा 1 घंटे के आसपास ये बानहाल पहुंच जाएगा, जबकि जो जो जम्मू भगवती नगर से आज सुबह काफिला निकला है वो बानहाल पहुंच चुका है। कुछ वक्त के बाद उन्हें यहाँ पर जो नाश्ता वगैरह होगा, घंटा 1 लगता है कम से कम, तो उसके बाद इन्हें कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है। कल उधमपुर सेक्टर में बारिश हुई, एक बहुत बड़ा पत्थर एक हाईवे पर गिर गया आया था, लेकिन एक ट्यूब को भी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन दूसरी ट्यूब से ट्रैफिक जारी है। और वहां पर भी जो रेस्टोरेशन का काम था वो देर रात तक किया गया और करीब रात 12:30 बजे उसे भी क्लियर किया गया और हाईवे मुकम्मल तौर से थ्रू है। और यात्रा के निकलने के बाद जो ट्रैफिक जम्मू से रवाना करना होता है 7 बजे से, वो रवाना किया गया है नगरोटा से, उन्हें चलने की इजाजत दी गई है। और ये ट्रैफिक इस वक्त कश्मीर वादी की तरफ बढ़ रहा है जो मुसाफिर ट्रैफिक है, जबकि पिछले कई रोज से हाईवे पर इश्यूज आ रहे हैं, मतलब ट्रैफिक बंद रहा, लेकिन आज जो है हाईवे बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरह से ठीक किया गया है, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिन पहले टेस्ट भी लिया गया और कल भी जो हाईवे है मतलब शाम को करीबन 2 बजे बाद रेस्टोर किया गया, यानी 1.5 दिन के बाद कहेंगे, तो इस वजह से जो आज जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चल रहा है। और इस वक्त जो जो एक तो श्री अमरनाथ यात्रा है, उसके अलावा जो सैकड़ों की तादाद में जम्मू से ट्रैफिक छोड़ा गया है वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान जो कश्मीर से मुसाफिर ट्रैफिक है, पैसेंजर व्हीकल्स में 11:30 बजे के बाद जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी, जबकि आज जो ट्रक वगैरह है एक तरफ से चलाए जाते हैं उन्हें भी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। ऐसा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें बताया गया है। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए। मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट दे रहे थे। जैसे कि बता रहे थे, जो है मौसम खुशगवार है और खुशगवार मौसम के बीच जो है तीर्थ यात्री बानिहाल पहुंच चुके हैं और वहां जो है आराम करने के बाद तीर्थ यात्रियों को जो है आगे की ओर भेजा जाता है। वही आज महकमे मौसम यहाँ से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों मार्गों पर मौसम आज खुशगवार ही रहने के इम्कान जताए गए हैं। वही सभी तीर्थ यात्री जो आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किए गए, सभी तीर्थ यात्रियों को जो है आज ट्रांजिट कैंप पांथा जो पहुँचाया जाएगा, वहाँ से होते हुए जो है बालतल के रास्ते उन्हें पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोतो, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारिक पहलगाम से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत शुक्रिया साहब, इस विशेष प्रसारण के सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा नमन और सुप्रभात। सावन दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 31वें दिन हो गए। श्री अमरनाथ जी यात्रा के रिवायती पहलगाम मार्ग पर आज मौसम जरूरी रूप से साफ और धूप वाला रहने की संभावना है। शाम दोपहर के बाद आकाश में बादल छाने गरज के साथ वर्षा और हल्की बारिशें के जरियों का प्रबल इम्कान है। पवित्र गुफा के आसपास तापमान कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक से अधिक 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर लगभग 1 बजे के बाद गर्जन के साथ वर्षा के इम्कान बढ़ जाएंगे, जबकि वक्त से बारिश जारी रह सकती है। इन क्षेत्रों में हवा में नमी 74 से 94% के बीच रहने और हल्की दक्षिण से दक्षिण के हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। इधर पहलगाम और निचले इलाकों में तत्काल का मौसम निस्बतन सुखद रहने का, लेकिन दोपहर के बाद बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा या गर्जन की संभावना भी है। इन इलाकों में अधिक से अधिक तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा
0: जी।
1: तो इसके बीच आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 46 छोटे बड़े वाहनों में केवल 1056 श्रद्धालु पर मुश्तमिल एक और जत्था बालतल के लिए घाटी की ओर बढ़ रहा है। जत्थे में 832 पुरुष, 205 महिलाएं, 2 बालक, 15 साधु और 2 साध्वी शामिल है। 11 बजे के करीब ट्रांजिट कैप काजीपुर पहुंच पाएंगे, जहां से बालतल के ओर निकल पड़ेंगे। 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक बाबा बर्फानी के पुण्य दर्शन वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 4,57,000

0: टीम और टीम वर्ग की भावना के साथ यात्रा प्रबंध को सुचारू बनाने में जुड़े हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जानकारी देने के लिए। श्रोतो ये थे एस तारिक पहलगाम से अपडेट्स दे रहे थे, जिसके बता रहे थे कि जो है पहलगाम के प्राचीन मार्ग से मुसलसल यात्रा जो है रुकी हुई गई है क्योंकि मौसम के पेश नज़र और रोड रिपेयरिंग को लेकर जो है इस मार्ग को जो है फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम बालटल के मार्ग से सभी रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को और नए जो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज घाटी की ओर रवाना किए गए उन्हें जो है आज ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाएगा। पांथा चौक से होते हुए जो है ट्रांजिट कैंप में विश्राम के बाद जो है उन्हें बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं आज श्रावण सोमवार भी है और आज के दिन पर जो है शिव भक्त बड़े जोश और उत्साह के साथ जो है आज पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है और शिव भक्त जो है पूरी आस्था के साथ जो है इस वक्त बालटल के मार्ग पर इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। शिव जी के दर्शन प्राप्त करने में जो है उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े वो पूरे जोश और उत्साह के साथ और शिव जी की कृपा से जो है आगे बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। वहीं बालटल की अगर बात करें बालटल के मार्ग पर भी जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे क्योंकि उससे जो है आपकी यात्रा आसान हो जाएगी, आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन निर्देशों और दिशा निर्देशों का जो है आप पालन नहीं करते हैं तो आपको जो है मुख्य किस्म की दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपकी सेवा में स्थानीय नागरिक जगह जगह पर आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जो है उनके साथ कॉपरेट करते रहे ताकि आपकी ये जो यात्रा है वो यादगार रहे और आप यादगार लम्हे अपने साथ ले जाए। श्रोताओं इस वक्त स्टूडियोज़ की कड़ी में ठीक 8 बज चुके हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं, पहले हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में कुछ पलों में समाचार सुनते हैं।
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की

0: लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
4: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpur ho aur ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है.
3: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
4: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स.
3: Counting of votes are underway for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Postal ballots has been counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all three states. In Madhya Pradesh, counting for the Datia Assembly seat has been held at the Government Polytechnic College, where 20 counting tables have been set up. The meeting of heads of the National Statistical Offices, NSO, of BRICS countries Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, UAE, will be held under the chairship of India from today in Lucknow. Our correspondent has the details.
5: India's BRICS chairship is guided by the overarching theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Within the BRICS statistics track, India has adopted the theme Quality Statistics as Driver of Change, reflecting an unwavering commitment to data quality, innovation, effective dissemination and people-centric statistical systems. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility, strengthening microeconomic and sectoral statistics. The objective is to further strengthen cooperation in the areas of dissemination of statistics, innovation in statistical systems and the exchange of knowledge and best practices. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
3: President Draupadi Murmu will arrive in Odisha today on a three-day visit. During her stay, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University in Cuttack and participate in a series of official educational and cultural programs in Bhubaneswar, Cuttack and Ganjam districts. We have a report from a correspondent.
6: President Draupadi Murmu will arrive in Bhubaneswar this afternoon on a three-day visit to her home state of Odisha. Later in the evening, she will inaugurate Jagat Guru Kripalu University at Bhara near Cuttack. Tomorrow, the President will travel by a special train from Bhubaneswar to Berhampur and later proceed by road to Taptapani in Ganjam district, where she is scheduled to offer prayers at Ma Kandhuni Devi Temple and the Shiva Temple. She will halt for the night at the Army Air Defence College at Golabandha. Elaborate security arrangements have been made with her. Around 40 platoons of police deployed in Bhubaneswar and Cuttack. No fly zones have been declared over Berhampur railway station, the president's travel route, Taptapani temple complex, the Army Air Defence College, and other designated venues to ensure foolproof security during the presidential visit. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
3: Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to introduce the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. US President Donald Trump has said the negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled to take place today. Speaking to reporters, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz, while asserting that an accord would be established concerning the denuclearization of Iran. In Pakistan, at least 14 people, including five security men, were killed in

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशतरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: मुनश्यात की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की समत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे।
1: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के आदाद शुमार के कौमी दफातर NSO के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनक़िद होगा। तफसील हमारे नामनगार से।
2: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजूद इस्तेहकाम, इख्तिरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद व शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद व शुमार तब्दीली का मुहर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद व शुमार के आला मेयार इख्तिरा मालूमात की मौसर तरसील और अवाम पर मरकूज शुमारियाती निज़ाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क्लीदी आदाद व शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निज़ाम में इख्तिरा और असलाहत को फ़रोग देना, आदाद व शुमार की इशात और आदाद व शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद व शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद व शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, شماریاتی نظام میں اختراع نیز معلومات اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنا بھی ہے۔ اجلاس کے ساتھ دو نصف روزہ ضمنی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے، جن میں انتظامی اعداد و شمار کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ اور ترقی پذیر ڈیٹا ایکو نظام میں مصنوعی ذہانت اے آئی کے لیے تیاری جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا آج سے اڑیشہ کا 3 روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ کٹک میں کری پالو جگت گرو یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی اور کٹک بھونیشور برہمپور اور گنجم ضلعوں کے تپتاپانی میں تعلیمی ثقافتی اور دیگر سرکاری پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اڑیشہ کی اپنی آبائی ریاست کے 3 روزہ دورے کے سلسلے میں آج سے پہر بھونیشور پہنچیں گی، بعد میں شام کو وہ کٹک کے نزدیک بنارا میں جگت گرو کرپالو یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی۔ وہ کل بھونیشور سے بہرام پور تک ایک خصوصی ٹرین سے سفر کریں گی اور بعد میں گنجم ضلع میں تپتا پانی کے لیے سڑک سے روانہ ہوں گے، جہاں وہ ماں کندھونی دیوی مندر اور شیو مندر میں پوجا ارچنا کریں گی۔ محترمہ مرمو گولا باندھا میں فوج کے ایئر ڈیفینس کالج میں رات قیام کریں گی۔ بھونیشور اور کٹک میں پولیس کی 40 پلٹنوں کی تعیناتی کے ساتھ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے دوران سیکیورٹی کے زبردست انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے بہرام پور ریلوے اسٹیشن، صدر جمہوریہ کے سفر کے راستے تپتا پانی مندر کمپلیکس، فوج کے ایئر ڈیفینس کالج اور دیگر مقامات کو نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: لوک سبھا میں آج سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اس بل کو پیش کریں گے، تاکہ بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں مزید ترمیم کی جا سکے۔ امکان ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکر بکس ایویڈینس بل 2026 پیش کریں گی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ 2026 سے پیش کریں گے۔ اسی دوران راجیہ سبھا میں بہت چھوٹ

छोटी और औसत दर्जे की सनअतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनअतों के मरकजी वजीर जीतनराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत के जराए सरगर्म हैं। सर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुस के इंतजाम इंसराम के हवाले से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमतनामे तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक गुज़श्ता माह दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अहम समंदरी गुजरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और ओमान के दरमियान उस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीक़ेकार से मुतालिक मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवात पुरअमन रैली सवात जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रमावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा।

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साल एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय

0: खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मोइनुद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अम्मा। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असम्बली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे थे। FM बालतल, FM पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें YouTube पर आकाशवाणी की आराधना चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरी जोश और उत्साह के साथ जारी है। आज सुबह तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का 26वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। 46 छोटे बड़े वाहनों में 1000 से अधिक तीर्थ यात्री बानीहाल से होते हुए काजीगुंड की ओर रवा दवा है, जिनमें कुल मिलाकर 832 पुरुष, 205 महिलाएं, 2 बालक, 15 साधु, 2 साध्वी शामिल है। इन सभी तीर्थ यात्रियों को और इसके अलावा रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को जो है आज बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर छोड़ा जा रहा है। आपको याद दिलाते चले, कल दिन भर जो है 1909 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए थे। आज हालांकि कम ही संख्या में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवा दवा है, तहम रुके पड़े बाकी तीर्थ यात्री जो है शिव भक्त जो है आज मिलकर एक साथ जो है बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा पहुंचकर शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 और आज का दिन एक खास महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। श्रावण सोमवार और श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों का संगम और इसी पवित्र मौके पर, पवित्र दिन पर जो है आज शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने में सुबह से जुटे हुए हैं। आज मौसम जो है ईश्वर की कृपा से खुशगवार है। राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू और बालतल मार्ग की अगर बात करें तो मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम मेंटेनेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है आज भी मुसलसल पहलगाम का एक्सिस जो है, पहलगाम का जो प्राचीन मार्ग है उसे बंद रखा गया है। ताहम बालतल के मार्ग से रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को और नए यात्रियों को जो है आज बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। श्रोता, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और कोई भी प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा करें। हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। नंबर एक बार फिर सुने, हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इसके अलावा आप प्रशासन द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर्स पर भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन नंबर 1800-1807-198, 1800-1807-199। नंबर एक बार फिर सुने, प्रशासन द्वारा दिया गया टोल फ्री नंबर। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, कोई भी मदद आपको चाहिए होगी, आप इन टोल फ्री नंबर्स पर राबिता कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुने, 1800-1807-198, 1800-1807-199। इन नंबर्स पर आप जो है किसी भी किस्म की मदद जो है हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले दिन से बता रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रशासन की मुसलसल ये कोशिश है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है तीर्थ यात्रियों की जितनी हो सके सेवा की जाए। जो 20 घंटे जो है आपकी सेवा में प्रशासन, स्थानीय नागरिक,

है। ताहम आप सभी से यह निवेदन कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी जो यात्रा है सफल और सुरक्षित तरीके से जो है संपूर्ण हो जाए। आकाशवाणी की भी मुसलसल यही कोशिश है कि आपकी सेवा की जाए, आप तक क्षण क्षण के अपडेट्स पहुंचाए जाए, आपकी सहायता की जाए। हमारी ये मुसलसल कोशिश सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है आप ये विशेष प्रसारण सुनते हैं। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, इस वक्त गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: जी
1: जी श्री अमरनाथ जी यात्रा

0: सिलसिले में हम अपने श्रोताओं को बादल क्षेत्र के वातावरण एवं यात्रियों की गतिविधि के बारे में विस्तार से सूचना साझा करते हैं ताकि बादल मुख्य मार्ग से पवित्र गुफा जाने वाले श्रद्धालुओं को सफर के दौरान कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। श्रोताओं, हम साथ ही आपको यहाँ के मौसम की स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचना देते हैं क्योंकि बालतल मुख्य मार्ग एक पहाड़ी क्षेत्र है एवं आपको ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। यहाँ मौसम का मिजाज हर पल बदलता रहता है, लिहाजा रेनकोट, लाठी, गर्म कपड़े, जूते साथ रखना ना भूलें। संयम एवं धीरे से सफर करें क्योंकि आपकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध एवं व्यवस्थाएं देखकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए रोज घाटी आगमन होकर पवित्र गुफा जाकर प्रार्थना करते हैं। देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। तो खुशगवार मौसम के बीच आज भी 7060 श्रद्धालु दुमीर कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस दौरान 5283 इसमें पुरुष थे, 1382 महिलाएं, 1320 महिलाएं, 1106 बालक बालिका, 31 साधु, 13 साधियां, 5 ट्रांसजेंडर एवं 300 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। यात्री पवित्र गुफा की ओर जोश जज्बे के साथ प्रस्थान हो रहे हैं। बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए आज सुबह 3 बजे ये यात्री दुमीर कंट्रोल गेट पर लंबी लंबी कतारों में नजर आए हैं। जोश जज्बे के साथ जय जयकारे के नारे गूंज उठे हैं पूरे क्षेत्र में। तो 4 बजे इन यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया और दर्शन करके सुरक्षित ये वापस बालतल बेस कैंप देर रात गए तक पहुंचते हैं। तो बीती रात 9 बजे तक 1804 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 1383 पुरुष, 234 महिलाएं, 66 बालक बालिका, 10 साधु, 6 साधियां एवं 105 सुरक्षा कर्मी थे। रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को सुबह सवेरे मुख्तलिफ वाहनों में जम्मू भगवती बेस कैंप की तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। इस तरह अगर हम यात्रा की बात करेंगे तो आज भी बीते दिनों की तरह बालतल मुख्य मार्ग से तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है और घाटी आगमन होने वाले श्रद्धालु अब बालतल मुख्य मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं और दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। यहाँ अगर हम बेस कैंप की बालतल की बात करेंगे या ट्रांजिट कैंप शादीपुरा या ट्रांजिट कैंप मनगाम की बात करेंगे जहाँ रात भर ये रात्रि विश्राम करते हैं, यात्री विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद उन्हें अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ सुबह सवेरे रवाना किया जाता है। तो इन तीनों मकामात पर या बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक बहुत सारे मकामात, ब्रारी मरग, दुमेल कंट्रोल, लोअर के, अपर के, पंच तरनी, जितने भी मकामात हैं तो वहां पे जिला प्रशासन ने उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है। खासकर इन मकामात पर लंगर जो है वो कायम किए गए हैं और इन लंगरों में दर्जनों सेवादार इनकी सेवा में लगे हैं जो 2 बजे ही उठकर इनकी सेवा करते रहते हैं ताकि ये जो बाबा बर्फानी के भक्त देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए हैं उन्हें किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उन्हें भोजन के लिए पहले ही वो चीजें तैयार रखते हैं, भोजन करने के बाद ही ये यात्री बाजाबता तौर पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं और जो ही ये वापस आते हैं तो इनके लिए गर्म पानी और भोजन वगैरह जो है, अन्य व्यवस्थाएं जो है वो उपलब्ध इनके लिए इन लंगरों में रखी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो यहाँ चाको चौबंद हर पड़ाव पे रखे गए हैं ताकि वो जो तीर्थ यात्रा जारी है इस दौरान वो इन यात्रियों की सहायता के लिए रखे गए हैं और उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस दौरान ये जो यहाँ की मौसम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यहाँ हर पल मौसम बदलता रहता है, कभी वर्षा होती है तो कभी धूप खिलती है और पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, तो इस दौरान इस सफर के दौरान यात्रियों इनको ये 14 किलोमीटर का सफर जो इनको तय करना पड़ता है, कठिन रास्ता है। यहाँ अक्सर यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, खासकर हमारे बुजुर्ग जो यहाँ आते हैं, चाहे
1: जी
0: महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी लाहक होती है। तो इस दौरान चिकित्सा विभाग ने जगह जगह चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं, जहाँ इन्होंने ऑक्सीजन की सहूलियात मैसर रखी है। तो जहाँ भी यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, उन्हें उसी मकाम पर ऑक्सीजन फराहम किया जाता है। इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिले अधिकारी के या वॉलंटियर जो हैं उनको चाको चौबंद रखा गया है। और किसी भी सूरत हाल से, क्योंकि आज वर्षा हो रही है, कभी कभार इतनी तेज वर्षा हो रही है कि क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं,
1: जी
0: सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, तो अगर ऐसी सूरत हो जाए तो इस वक्त इससे निमटने के लिए ये जो तमाम एजेंसियां चाको चौबंद रखे गए हैं, वो तैयार हैं किसी भी हालात से निमटने के लिए। तो इस तरह जिला प्रशासन के लिए काफी महत्वपूर्ण है यात्रियों की सुरक्षा।
1: जी
0: तो सुरक्षा के लिए वो उन्होंने कड़े प्रबंध किए हैं। तो बिल्कुल इसके आला जो सूबाई और जिला प्रशासन के आला अफसरान हैं, वो बाजाबता तौर इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो आज भी बालतल मुख्य मार्ग से तीर्थ यात्रा धार्मिक रूप से जारी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद आपका भी।
1: श्रोताओं, ये थे रहीम रिजवान, गांधरबल से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है पूरे जोश और उत्साह के साथ तीर्थ यात्री शिव भक्त जो है सुबह तड़के से ही पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है, और 7,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है सुबह तड़के दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट जो है पार किया है, और इस मार्ग पर जो है इस वक्त काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहलगाम का प्राचीन मार्ग जो है फिलहाल के लिए बंद है, और इस रश को देखते हुए जो है प्रशासन ने जगह जगह पर तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए जो है काउंटर्स बनाए हैं, भोजन के लिए काउंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्पलाइन काउंटर्स हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता रिजवान बता रहे थे कि ऊपरी क्षेत्र में जो है जब आप बालटल के मार्ग से जाते हैं तो ऊपरी क्षेत्र में जो है बुज़ुर्ग जो महिलाएँ होती हैं या पुरुष होते हैं उनको जो है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी रहती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है प्रशासन ने जगह जगह पर काउंटर्स बनाए हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, हेल्थ को लेकर जो है वो बड़े कॉशस रहते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ पर जो है 24x7 रेडी रहते हैं ताकि किसी भी यात्री को जो है इस किस्म की परेशानी से जूझना ना पड़े। और इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सरकार की पहले दिन से ही ये मुसलसल कोशिश है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय नागरिक मिलकर जो है ये कोशिश है कि सभी तीर्थ यात्रियों को जो है उनको आसानी फराहम की जाए, उनकी यात्रा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाए। हालांकि इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि यात्री भी जो है मुसलसल प्रशासन के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं, तभी जाकर जो है प्रशासन के जो गोल्स रहते हैं, रोड मैप रहता है, वो मुकम्मल होता है, वो पाए तकमील तक पहुँचता है। और हमारी एक बार फिर सुनने वालों से यही गुजारिश, तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश, शिव भक्तों से यही गुजारिश कि आप जो है मुसलसल इसी तरह से जो है अपना ख्याल रखते रहे और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। जैसा कि हम पहले दिन से ही बता रहे हैं कि जो भी आदेश आपको दिए जाते हैं उनका पालन करते रहे, आप एक समूह में यात्रा करें, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए, और अगर आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना है आप नज़दीकी हेल्पलाइन काउंटर्स का फ़ायदा उठाएं, वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे बात करें, उनसे राबता कायम करें ताकि उस प्रॉब्लम को जो है जल्दी से जल्दी आप दूर कर पाए, और यात्रा को जो है आपको आसान बनाने के लिए जो है सरकार मुसलसल इस कोशिश में है, और ये कोशिश जो है बरोएकार लाई जा रही है। बात अगर ट्रांजिट कैंप्स की करें या जहाँ पर आप विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, वहाँ पर भी जो है आपको आते समय या निकलते समय जो है आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सुविधाएँ फराहम की जाती हैं। और हमारी भी, आकाशवाणी की भी ये मुसलसल कोशिश है कि हम जो है क्षण क्षण के अपडेट्स, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे, ताकि हम भी इस पवित्र यात्रा में जो है आपका हाथ बटा सके, आपकी सहायता कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे इस विशेष प्रसारण के संग। विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम माध्यम से आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर, आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की आराधना यूट्यूब चैनल पर भी हम उपलब्ध है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित हो उठते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञाने न तो ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवा। अज्ञानेन, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं, हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो योनः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो योनः प्रचोदयात की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता, ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी की OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, 9:25 होने को है। कुछ ही क्षणों में हम समाचार सुन पाएंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तारीख, तहजीब और सकाफत से मुतलिक किताबें नस्लों के दरमियान पुल का काम करती हैं। वो डॉक्टर ए एस शाह की तहरीर करते किताब शारदा से संसद की रस्म रोनुमाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। एल जी ने कहा कि डॉक्टर ए एस शाह की तसनीफ हमें याद दिलाती है कि तारीख और सकाफत कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने कहा कि शारदा ने मुआशरे की दानिश व हिकमत की आबियारी की और पार्लियामेंट ने कौम की उमंगों को पूरा करने के लिए काम किया है।
1: मेरा मानना है कि संस्कृति एक जीवंत शक्ति है। प्रत्येक पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत को वसीयत के रूप में प्राप्त करती है और अपनी इस विशिष्ट पहचान के साथ उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती है। यही एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला होती है। डॉक्टर शाह ने इस पुस्तक के माध्यम से संस्कृति के इन मूल्यों को सामने रखने का प्रयत्न किया है। इसलिए मेरा एक आग्रह होगा कि आज जब भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, तब हमें अपनी सभ्यतागत संपदा के संरक्षण में भी सबको समान रूप से निवेश करना होगा।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी नौजवान आबादी है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का मकसद नौजवानों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की तरगीब देना है। वो महकमा उम्र नौजवान व खेलकूद और सुकाष्ट कश्मीर के इश्तराक से मुनक़द यूटी सतह की तकरीब में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज पर खिताब कर रहे थे। खेलों के फरोग के आज़म का इरादा करते हुए कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठिर ने कहा कि सेहतमंद, बावकार और तरक्की पसंद मुआशरे की तामीर के लिए खेलों को मौसर जरिया बनाया जा रहा है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाएं और नशे से दूर रहें। वो तुजन बड़गाम में मकामी नौजवानों की जानिब से मुनक़द एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर रहे थे। हुकूमत ने पुलवामा कस्बे के लोगों को पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और इलाके में सप्लाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की गर्ज से 18 करोड़ 96 लाख रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है। एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत लोगों के मयारी हयात को बेहतर बनाने के लिए वादाबंद है। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने 19 करोड़ 61 लाख रुपये के एक जामिया सीवरेज मनसूबे को भी मंजूरी दी है। इस मनसूबे के तहत अहमदनगर, पांदच, इलाहीबाग, 90 फुट, रंगपोरा, जकूरा और गुलाबबाग में जदीद सीवरेज निज़ाम कायम किया जाएगा। बीजेपी लीडर और इंटरनेशनल अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशनल डेलीगेट सहर खान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने माह सितंबर में मुनक्किद होने वाले बैन अवी पावरिंग द फ्यूचर के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मौसूल होने वाला दावतनामा एलजी को पेश किया। उन्होंने अकवामी मुतहदा के मुख्तलिफ फोरम्स पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने से मुतलिक अपनी गुज़श्ता मसरूफियात के बारे में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह किया। इस दौरान शेलजा वजीर फिक्की एफएलओ की रुकन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। इधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अनंतनाग के सदर एस नानक सिंह की कयादत में एक वफद ने भी एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 1056 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफिला वादी की जानिब रवाना किया गया। आज सुबह 8 बजे तक 396 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कुलगाम के काकरण इलाके में माता कात्यानी भगवती स्थापन की तारीखी धर्मशाला की बहाली और मरम्मत के मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जिस पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए लागत आने का अंदाजा है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने तारीखी विरसे के मकाम के तहफ़ और अवामी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। भारत के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर महकमा इतलात व नशरियात मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के 13 साल और इससे ज़ायद उम्र के नौजवानों को मदऊ कर रहा है। ये मुकाबले 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मुनक्किद हो रहे हैं। इन मुकाबलों में नेशनल एंथम सिंगिंग, एसे राइटिंग और ड्राइंग कम्पटिशन शामिल हैं। इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों को पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए बिल तरतीब 10,000, 7,500 और 5,000 रुपये नकद इनाम के तौर दिया जाएगा। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावर प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज और कल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक हो रही है। ख्वाहिशमंद अफराद अपने मसाइल रिकॉर्डिंग करवाने के लिए फोन नंबर 0194-245-2019 पर कॉल कर सकते हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.8 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही ये खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ जो है जारी है। आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का 26वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुछ ही घंटों में ये जत्था जो है काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच जाएगा। काजीगुंड से होते हुए सभी तीर्थयात्रियों को आज ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाएगा। पांथा चौक के बाद गांदरबल से होते हुए आप बालतल के मार्ग से आज पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 400 से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त करके वापसी का सफर बांधा है। मौसम की पेश नज़र जो है आज सभी तीर्थयात्री खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा। दिन भर जो है आज खिली खिली धूप देखने को मिलेगी। वही आज श्रावण सोमवार भी है। आज जो है शिव भक्त यात्रा और श्रावण सोमवार इन दोनों का संगम जो है पवित्र गुफा में देखने को मिलता है। आज खसूसी तौर पर जो है शिव भक्त पूजा पाठ का अहतमाम करते हैं, शिव चालीसा का अहतमाम करते हैं और आज का दिन जो है खासा अहम माना जाता है, क्योंकि आज के दिन शिवजी सभी की प्रार्थना ही जो है कबूल करता है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। अभी अभी मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 775 तीर्थयात्री जो है शिव भक्त जो है शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त करके वापस आ चुके हैं, जिनमें से 440 पुरुष, 244 महिलाएं, 27 बालक, 3 साधु, 61 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 775 तीर्थयात्री बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करके गुफा से वापस आ चुके हैं और आज जो है सभी तीर्थयात्री बालतल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। और इस मार्ग पर जो है आपको जगह जगह पर सुरक्षाकर्मी, स्थानीय नागरिक, प्रशासन के मुख्तलिफ काउंटर्स मिलेंगे, जहां पर जो है आपकी सेवा की जाएगी। आपकी सहायता के लिए जो ये काउंटर्स बनाए गए हैं और कोशिश यही है कि सभी तीर्थयात्रियों की ये जो यात्रा है वो यादगार बने, वो ये खूबसूरत यादें, खूबसूरत पल जो है अपने साथ ले जाए। आकाशवाणी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से हमारे संवाददाता इमरान नायकू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: चूंकि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 जारी है और आज भी श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का एक जत्था जो है वो अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया आज सुबह। और इस जत्थे में मेल फीमेल साधु साधी और कुछ बच्चे भी शामिल थे। हैवी सिक्योरिटी के बीच में इस जत्थे को सुबह रवाना किया गया और ये वो अमरनाथ जी यात्री थे जो जिन्होंने नाइट स्टे यहाँ ट्रांजिट कैंप श्रीनगर में किया, जहाँ इनके लिए हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की तरफ से सुविधाएं रखी गई थी। और मजीद एक और जत्था जो है वो आज यहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा कुछ ही देर बाद
0: जी।
1: और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों का आना, यहाँ पे स्टे करना और यहाँ से फिर अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना करना, ये लगातार पहले दिन से जारी है। और आज भी हम देख रहे हैं कि एक खुशी की लहर अमरनाथ जी यात्रियों में देखी गई। काफी प्रसन्न, काफी खुश थे कि उन्हें दर्शन के लिए यहाँ से रवाना किया गया, जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहाँ या राज्यों से यहाँ पे कश्मीर आए थे। और मौसम का जहाँ तक ताल्लुक है, आज अच्छी खबर यह है कि श्रीनगर में बिल्कुल धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल सुहाना है। और इस सुहाने मौसम के बीच में अमरनाथ जी यात्रियों को यहाँ से अमरनाथ जी पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है। और मजीद जो आज यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा, यानी वो नाइट स्टे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वो ठहरेंगे और कल बाजाबा तौर पर सुबह उन्हें यहाँ से अमरनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही अमरनाथ जी यात्रियों में वो खुशी है और खासकर कंटिन्यूसली हम अमरनाथ जी यात्रियों से बात कर रहे हैं, उनसे यात्रा को लेके अरेंजमेंट्स को लेके फीडबैक हासिल कर रहे हैं
0: जी।
1: और खासकर जो प्रशासन की तरफ से जो यात्रियों के लिए अरेंजमेंट्स रखे गए हैं तो काफी खुश है, जो कि जम्मू के भगवती नगर के स्टेप से यहाँ तक अभी तक यात्रियों का यही मानना है कि प्रशासन काफी अच्छे इंतजाम रखे हैं। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, ITBP, BSF, CRPF, YACHO, BRO जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, ट्रैफिक पुलिस, गवर्नमेंट के जो सिविल लाइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, हर एक अपनी जो है खिदमत पेश कर रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं और उनका भी जो व्यवहार है वो काफी अच्छा अमरनाथ जी यात्रियों के साथ देखने को मिलता है, जो कि यात्री खुद कह रहे हैं। तो फिलहाल आज भी यात्रा पुरमन तरीके से जारी है और आज पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। और आपको ये भी बताएं कि 12 अगस्त को यहाँ श्रीनगर में जो अमरनाथ जी यात्री की जो छड़ी मुबारक है उसे भी यहाँ पूजा के लिए लाया जाएगा। इसके लिए जो शंकराचार्य मंदिर है और 13 तारीख को यहाँ दशमी अखाड़ा मंदिर, और इस सिलसिले में उसका भी इंतजार है क्योंकि छड़ी मुबारक कश्मीर में ही है और इसलिए अमरनाथ जी यात्री जो है वो खुशी से यहाँ आ रहे हैं और यात्रा करके वापस लौट भी रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
1: शुक्रिया।
0: श्रोतो, ये थे इमरान नायको पांथा चौक से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है मुख्तलिफ किस्म की सुविधाएं जो है तीर्थयात्रियों के लिए इस ट्रांजिट कैंप में रखी गई है। और जो रात भर वहाँ पर रुके हुए यात्री थे, जो सुबह जो है तड़के जिन्हें बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया, खुशगवार मौसम के बीच हल्की धूप जो है सुबह से ही श्रीनगर में देखने को मिल रही है। ताहम मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज बालतल के मार्ग पर भी मौसम खुश्क रहेगा, खिली खिली धूप देखने को मिलेगी और इस खूबसूरत सुहाने मौसम में जो है हर्षोल्लास के साथ तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के नारे लगाते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आपको बताते चले, जो तड़के जो कि भगवती नगर बेस कैंप से 1,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का जत्था, 24वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया, वो भी जो है खुशगवार मौसम के बीच इस वक्त काजीगुंड की ओर रवाना दवा है। और काजीगुंड में जो है लंबर ग्राउंड, काजीगुंड में जो है वहाँ पर उन्हें आराम किया जाता है।

हाल सस्पेंड की गई है, ताहम बालतल के मार्ग से खुशगवार मौसम में, सुहाने मौसम में जो है शिव भक्त आज श्रावण सोमवार के मौके पर जो है पवित्र गुफा की ओर बड़े खुश असलूबी के साथ जो है चहलकदमी कर रहे हैं और शिवजी के दर्शन प्राप्त करने के लिए बेताब नजर आ रही है। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचनाएं जो है आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी की OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, तीर्थ यात्रा 2024 का आज 26वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। सभी तीर्थ यात्री खुशगवार मौसम में जो है इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवा दवा है। 46 छोटे बड़े वाहनों में 1000 से अधिक तीर्थ यात्री आज घाटी पहुंचने वाले हैं। इन सभी तीर्थ यात्रियों को जो है और रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को जो है बालटल के मार्ग से आज श्रावण सोमवार के मौके पर पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों से आए हजारों तीर्थ यात्री जो है आज खुशगवार मौसम में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। यात्रा के दौरान जो है आपको सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारी जो है आपकी सेवा में मुसलसल लगे हुए हैं। लंगरों में निशुल्क भोजन, चाय और चिकित्सा सेवा जो है भक्तों के लिए मुसलसल उपलब्ध कराई जा रही है। श्रोताओं, ये सेवा भव जो है हकीकी मानों में हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनोखी पहचान है।

श्रावण सोमवार हमें सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि दया, सेवा, विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देती है। यात्रा पर जाने वाले हर भक्ति से यही गुजारिश है कि स्वच्छता का जो है आप विशेष ध्यान रखें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखें और हिमालय की पवित्र प्रकृति का सम्मान करते रहे। यात्रा पर जब आप निकलते हैं अपनी सेहत का भी आप पूरा ध्यान रखें। वक्फे वक्फे से जो है मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें, अपने साथ गर्म मलबूसात, पानी की बोतल, अम्ब्रेला, विंड चीटर, वाटरप्रूफ बैग्स और बाकी अन्य सामान जो है वह अपने साथ ज़रूर रखें और कोशिश करें कि जो भी दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा आपके लिए जारी किए जाते हैं उनका आप पूरी यात्रा के दौरान पालन करते रहे। श्रोतो बाबा बर्फानी के दर्शन को जो है आज के दिन हमें ये शिक्षा देता है, आज श्रावण सोमवार और श्री अमरनाथ जी यात्रा इन दोनों का संगम जो है, ये दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो है धैर्य, तपस्या और श्रद्धा से हर एक कठिनाई को जो है हम पार कर सकते हैं। जब आप पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन प्राप्त करते हैं तब आपकी आंखों में जो है खुशी के आंसू और हृदय में अनंत शांति का जो है अनुभव होता है। वाकई वे पल जो है शब्दों में व्यक्त करना जो है संभव नहीं है। आज के इस श्रावण सोमवार पर हम सब मिलकर जो है शिवजी से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो है सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का जो है वरदान दे। हमारे देश में प्रेम, सद्भावना और एकता बनी रहे। सभी यात्रियों की यात्रा सफल, सुरक्षित और मंगलमय हो, यही आकाशवाणी की मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTS की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की आराधना चैनल YouTube चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, आज तड़के जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का 26वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। 1000 से अधिक तीर्थ यात्री जो है कुछ ही पलों में काजीगुंड पहुंचने वाले हैं। सभी तीर्थ यात्री आज बालतल के मार्ग से जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। खुशगवार मौसम में बालतल के मार्ग पर जो है शिव भक्त श्रावण सोमवार के मौके पर पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। हमें अभी अभी मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है 1485 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 900 पुरुष शामिल है, 444 महिलाएं, 44 बालक, 5 साधु, 92 सुरक्षाकर्मी भी इनमें शामिल है। कुल मिलाकर 1485 तीर्थयात्री अभी तक जो है ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यहाँ जो है आस्था, समर्पण, साहस और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर वर्ष की तरह जो है लाखों श्रद्धालु, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, 4 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है कठिन मार्गों से होते हुए इस वर्ष भी शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। और इस वर्ष की यात्रा में जो है शिव भक्त विशेष उत्साह के साथ अभी भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। स्थानीय नागरिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर जो है तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए जो है व्यापक मुसलसल प्रबंध कर रहे हैं। प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय नागरिक जो है मिलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं, मिलकर ये काम कर रहे हैं कि सभी तीर्थयात्रियों को जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है सभी तीर्थयात्रियों को जो है आसानी मिल पाए, उनकी यात्रा को जो है यादगार बनाया जाए, किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े उन्हें। हालांकि मौसम की वजह से जो है कई एक दिन यात्रा को रोकना पड़ा और आज जो है ईश्वर की कृपा से मौसम खुशगवार है। जम्मू की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, या श्रीनगर, पांथा चौक, बालतल का मार्ग, सभी जगह जो है आज मौसम खुशगवार देखने को मिल रहा है और हल्की धूप देखने को मिल रही है। और इस खुशगवार मौसम में जो है शिव भक्त श्रावण सोमवार के मौके पर सुबह तड़के से ही पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते चले, आज हमें मिली लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है अभी तक 1485 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 900 पुरुष, 444 महिलाएं, 44 बालक, 5 साधु, 92 सुरक्षाकर्मी शामिल है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें,

यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफ एम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें यूट्यूब पर आकाशवाणी की आराधना चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा करें। हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। नंबर एक बार फिर सुने 9596990954। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aashvanibaltal@gmail.com, aakashvanibaltal@gmail.com। प्रशासन द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर्स पर भी आप किसी भी किस्म की जानकारी

हासिल करना चाहते हो तो आप इन नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स है 1800 1807 1918, 1800 1807 1918, 1800 1807 1919, यानी 1800 1807 1919। इन नंबरात पर जो है आप राबिता कायम कर सकते हैं। किसी भी किस्म की जानकारी आपको चाहिए होगी आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनसे मदद हासिल कर सकते हैं, आप इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी हवाले से आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पर राबिता करके वो जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। आपको याद दिलाते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे जोश उत्साह के साथ बालटल के मार्ग पर इस वक्त जारी है। खुशगवार मौसम के बीच हज़ारों तीर्थ यात्री जो है पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है, और हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार एक बार फिर आपको याद दिलाते चले, 1485 तीर्थ यात्रियों ने जो है सुबह 10:30 तक जो है तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त करके श्रावण सोमवार के मौके पर जो है शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। और खुशगवार मौसम में जो है मज़ीद तीर्थ यात्री शिव भक्त जो है बालतल के मार्ग पर इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवा दावा है। ताहम आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे, एक समूह में यात्रा करें, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए। अपने साथ जो है मौसम के हालत को नज़र रखते हुए आप गर्म अलबूसात, ऊनी मोज़े, वाटर प्रूफ बैग्स, विंड चीटर्स, लेसेस वाले शूज़ और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको किसी भी किस्म की मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है आप तैयार रहे। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है इस मार्ग पर जो है बालतल के मार्ग पर जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम ऊपरी क्षेत्र में, हिमालय के इस ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का अंदेशा नहीं रहता है। पहले आप जो है अपने साथ इन चीज़ों का एहतमाम करें ताकि ऊपरी क्षेत्र में आपको किसी की किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। और हाँ, जब आप नीचे ट्रांजिट कैंप्स की ओर जाते होंगे या नीचे जो बहुत सारे काउंटर्स आपकी सहायता के लिए लगाए गए हैं उनसे आप राबिता कायम करें, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है, आप जो है नज़दीकी मेडिकल काउंटर्स का जो है उनका इस्तेमाल करें, वहाँ डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही जो है आप ऊपरी क्षेत्र की ओर सफ़र करें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। पहले ही इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, और हाँ, अपना RFID कार्ड पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें ताकि आपकी सुरक्षा को जो है संभव बना पाए। आकाशवाणी की भी मुसलसल यही कोशिश है कि हम जो है क्षण क्षण के अपडेट्स आप तक पहुंचाए, ताकि आपको जो है ये पूरी यात्रा जो है आपकी यादगार बने, आप इन खूबसूरत लम्हात को, यादगार लम्हात को जो है अपने साथ रखें। आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप बने रहिए। आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर FM 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म व्यूज़ के अलावा आप हमें आकाशवाणी की YouTube चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले इस वक्त हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 2987 तीर्थयात्रियों ने आज श्रावण सोमवार के मौके पर पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 2004 पुरुष, 704 महिलाएं, 64 बालक, 8 साधु, 207 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 2987 तीर्थयात्री जो है

अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। आपको याद दिलाते चले, आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो है आज तीर्थ यात्रा का जो है 26वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। कुछ ही पलों में जो है वो काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंचने वाला है। 46 छोटे बड़े वाहनों में 1056 तीर्थ यात्री काजीगुंड पहुंचने वाले हैं, जिनमें 832 पुरुष, 205 महिलाएं, 2 बालक, 15 साधु, 2 साध्वी शामिल है। 1056 तीर्थ यात्री और रुके पड़े बाकी तीर्थ यात्री जो है सुबह से बालतल के मार्ग पर जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना दवा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 2987 तीर्थ यात्रियों ने जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किया। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।
4: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और

0: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुशगवार मौसम में जो है रवा दवा है। आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का 26वां जत्था जो है काजीगुंड पहुंच चुका है। सभी तीर्थयात्रियों को जो है कुछ ही वक्फे बाद पांथा चौक ट्रांजिट कैंप श्रीनगर पहुंचाया जाएगा और इन शिवभक्तों को जो है गांधरबल के रास्ते बालतल से होते हुए जो है इन्हें पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। अभी अभी मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अब तक 4,862 तीर्थयात्रियों ने जो है पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्षवानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। इनमें से 3,506 पुरुष, 934 महिलाएं, 87 बालक, 14 साधु, 3 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 317 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 4,862 तीर्थयात्रियों ने जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर श्रावण सोमवार के मौके पर जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हमारी सहयोगी साइका आपके साथ जुड़ेगी। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, जुड़ चुके हैं आप उद्घोषक सायका सलीम के साथ श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन पा रहे हैं। और श्रोताओं, हम बाबा के सभी भक्तों का उनकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हुए बढ़ते हैं आगे।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। आपको बता दें कि आज प्रातः आधार शिविर भगवती नगर से कुल मिलाकर 1056 तीर्थयात्री 46 छोटे बड़े वाहनों में इनको घाटी की ओर जो है रवाना कर दिया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 832, महिलाएं 205, बालक 2, साधु 15, साध्वी 2, यूं कुल मिलाकर ये संख्या 1056 बन जाती है, जिनको आज घाटी की ओर रवाना कर दिया गया आज प्रातः 46 छोटे बड़े वाहनों में।

श्रोताओं, 12 बजे तक कुल मिलाकर आपको बता दें 4,862 तीर्थयात्री उन्हें जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य पाया है, जिनमें पुरुषों की संख्या 3,505, महिलाएं 934, बालक 87, साधु 14, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षाकर्मी 317, और यूं कुल मिलाकर ये संख्या बन जाती है 4,862 जिन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं आज 12 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ।

0: पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुँच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognised centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
1: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment.

0: recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashvani News, he criticized the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Swaraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel is leading by 37,542 votes. In Madhya Pradesh's Datia assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading by 1,786 votes. Polling for the three assembly constituencies was held on the 30th of last month. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan Sharan Singh and co-accused Vinod Tomar in a sexual harassment case filed by women wrestlers. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pawar acquitted ex-BJP MP Brijbhushan and Vinod Tomar and former Wrestling Federation of India Assistant Secretary in the case. The court had reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by six women wrestlers. In Odisha, the flood situation is steadily improving with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Pakistani armed forces' brutal attack on peaceful protesters continues in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Violent clashes were reported between protesters and security forces, with the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir alleging a significant rise in casualties. According to the human rights group, over 80 people were killed in the firing on protesters by security forces. Negotiations between the United States and Iran are scheduled to take place today through intermediaries. Speaking to reporters on board Air Force One, U.S. President Donald Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz. And with that, we end this news bulletin.
1: आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता

0: मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें, साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
1: श्रोताओं तो बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, जिसमें क्षण की जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। बने रहिए हमारे संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संबंध में आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं बालताल के मार्ग से FM 103.7 MHz पर FM पहलगाम सुन रहे हैं आप जी। हाँ, पहलगाम के मार्ग पर 100.1 MHz पर आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं और आराधना चैनल पर और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं और साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे एकमात्र मोबाइल नंबर जो है 9596990549596990954 पर। आप अपने अनुभव या इस प्रसारण से जुड़ी कोई सलाह, कोई सुझाव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कोई अपना वॉइस नोट भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और हम ये आपको बता दें कि वो वॉइस नोट्स जो है आपके हैं इस प्रसारण में हम शामिल जो है अवश्य करेंगे। आपकी बात, आपका कोई भी सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। श्रोता, आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। समाचार के लिए करें बस जरा सी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हिरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर 3रे मकाम पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है और मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कई मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इनमें नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला भी शामिल है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक महकमे के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने आदादोशुमार से मुतालिक भारतीय इंस्टीट्यूट बिल 2026 पेश किया। मस्कूरा बिल का मकसद आदादोशुमार के उलूम और मुतालिका शोबों में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मरकज के तौर पर मस्कूरा भारतीय इंस्टीट्यूट के लिए एक जामे आईनी फ्रेमवर्क फराहम करना है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद बैंकर्स बुक्स के ताल्लुक से शवाहिद से मुतालिक कानून मुरतब

0: करना और इसे मौजूदा डिजिटल बैंककारी तौर तरीकों के साथ हम आहंग बनाना है। इधर ऑपोजिशन के अरकान नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। इससे कबल जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: राज्यसभा में भी मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। आज दिन में 11 बजे जब ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। जनाब राधाकृष्णन ने इसके बाद वक्फा सिफर की कार्रवाई शुरू की। अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामलात पर नारेबाजी शुरू कर दी। मरकजी वजीर संजय सेठ और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले एक मेंबर पार्लियामेंट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए भर्ती के अमल में संगीन बेसाब्दगियों का इल्जाम लगाया है और यह दावा किया है कि मुस्तहक उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं किया गया, जबकि उन उम्मीदवारों को चुन लिया गया जिनके नंबर बहुत कम थे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि एजिटेशन जारी रहने के बावजूद रियासती सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात नहीं की। इधर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने लोकसभा की इस्तेहकाक कमेटी को एक नोटिस पेश किया है और पार्लियामेंट के अहाते में आजाद मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव की जानिब से मुराद शिकनी का इल्जाम आयद किया है। पार्लियामेंट एहाते में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब संजय जायसवाल ने इल्जाम लगाया कि जनाब पप्पू यादव ने आईन की दफा 25 की खिलाफवर्जी की है जो मजहब की आजादी की गारंटी देता है।
2: भारत का संविधान जो 25 के तहत हर धर्म के सम्मान को ही आजादी देता है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। लोकसभा का ये जो पूरा प्रेमिसेज है, इसके कस्टोडियन माननीय स्पीकर महोदय हैं और मकर द्वार के सामने भी जो कुछ हुआ है उस पर हर हालत में स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मंजलपुर असेंबली हलके में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल को 46,000 से ज्यादा वोटों की सबकत हासिल है। मध्य प्रदेश के दातिया असेंबली हलके में कांग्रेस के घनश्याम सिंह 31,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इन तीनों असेंबली हलकों में जुमनी चुनाव पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती की खातून खिलाड़ियों की जानिब से दाखिल करदा जिंसी तौर पर हिरासत किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह और साथी मुलजिम विनोद तोमर को इल्जाम से बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ब्रिजभूषण और भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इससे कबल मई 2024 में एक अदालत ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ डराने धमकाने का इल्जाम तय करने का हुक्म दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब किस्मत साथ ना दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक हुनरमंद मल्लाह जिसकी कश्ती बीच समंदर में फंस जाती है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर कोशिश जारी रखता है और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में सदर जमहूरिया गंजुम जिले में मुख्तलिफ तालीमी, सकाफती और सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریہ پٹیل نے نئی دلی میں اعضاء کے عطیہ کے 16ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کیا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت میں اعضاء بدلنے کے معاملات بڑھ کر 20,000 سالانہ ہو گئے ہیں۔
3: ہم نے آج جگ جگ جیو ابھیان کو پرارمبھ کیا ہے۔ یہ ابھیان دیش کے عام جن مانس کے بیچ میں انگدان کے مہتو کو لے کر جائے گا، اور میرا سبھی دیش واسیوں سے یہی کہنا ہے کہ ہمارے اتہاس میں انگدان کو ہمیشہ مہادان کے روپ میں دیکھا گیا ہے۔
0: محترمہ انوپریہ پٹیل نے یہ بھی کہا کہ اعضاء بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اور چین کے بعد عالمی سطح پر بھارت تیسرا ملک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ثالثوں کے توسط سے ایران کے ساتھ بات چیت آج ہونے والی ہے۔ ایئر فورس ون میں سوار نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے وسیلے سرگرم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کے تناظر میں انہوں نے اس کارروائی کو روک دیا جس کے تحت ایک بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، بہار، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر اڈیشہ میں سبھی بڑے دریاؤں اور ان کی 52 ندیوں میں پانی کی سطح کم ہونے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال میں رفتہ رفتہ بہتری آ رہی ہے۔ یہ خبر بھی سن لیجئے، بہار کے بانکی پور اسمبلی کے ضمنی چناؤ میں جن سوراج پارٹی کے پرشانت کشور 8,000 سے زیادہ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں پارلیمنٹ کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن چرن سنگھ کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضاء عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے کیے گئے ہیں۔ اعضاء بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر تیسرے مقام پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی اہم بات چیت آج ہونے کی امید ہے۔ اور موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Charan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman also introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for a law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. Earlier, when the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the house. Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
5: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted

0: रामायण मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
1: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी

0: है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
4: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपको बता दें कि ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी सुन पा रहे हैं।

प्रिय श्रोताओं, आप बने हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और अभी आपको बता दें कि 1 बजे तक कुल मिलाकर 6036 बाबा बर्फानी के भक्तों ने जो है दर्शन के सौभाग्य पाए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 4456, महिलाएं 1134, बालक 93, साधु 22, साध्वी 5, ट्रांसजेंडर 3 और सुरक्षा कर्मचारी 323। यूँ कुल मिलाकर ये आंकड़ा आज 1 बजे तक का बन जाता है 6036।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्रावण का महीना चल रहा है और ये आज सोमवार भी है, और श्रावण का सोमवार जो है बहुत ही महत्व रखता है। यह दिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए समर्पित है, जो उनके प्रिय पवित्र महीने यानी कि सावन में आता है। ये समय अधिकतम विकास व्रत रखने और ईश्वर की कृपा पाने का होता है। अधिकतम और पौराणिक महत्व भी ये रखता है, यानी कि भगवान शिव जी की कृपा सोमवार का दिन भगवान शिव जी के लिए पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस दिन पूजा करने से गहरी आध्यात्मिक शक्ति और शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इसी महीने में समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव जी ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पी लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था, जैसे कि कहा जाता है नीलकंठ। जल चढ़ाने से उन्हें शीतलता मिलती है,

माता पार्वती की भक्ति की बात करें तो देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में जो है सावन में व्रत रखा था, जो अविवाहित महिलाओं को एक आदर्श जीवन साथी पाने के लिए व्रत रखने की प्रेरणा भी देता है। मुख्य रीति रिवाज और परंपराओं की बात करें तो जल अभिषेक, पवित्र जल, दूध, दही, शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। पवित्र चढ़ावे की बात करें तो बेलपत्र, सफ़ेद फूल और चंदन का लेप चढ़ाना और व्रत रखना, दिन भर का व्रत रखना, ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो करना और सूर्यास्त के बाद केवल सात्विक या फल आधारित भोजन करना।

0: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और इस वक्त फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो जिनसे हम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग का बिल्कुल मौसम अब खुशगवार मौसम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक के लिए खुली है और दोनों तरफ का ट्रैफिक इस पर चल रहा है, जबकि इससे पहले जो अमरनाथ यात्रा के दोनों जो काफिले थे जो जम्मू से आज श्री अमरनाथ यात्रा का 26वां बेज जो भेजा गया आज, तो उसमें जो गाड़ियां थी सुबह, तो वो सुबह के ही वक्त 256 यात्रियों को लेकर कश्मीर की तरफ निकाली गई। तो उसके बाद जो जम्मू से कहेंगे अब तक तो भगवती नगर से अब तक 1,40,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए जा चुके हैं, जबकि 4,00,000 से ज्यादा अब तक दर्शन कर चुके हैं जो से। तो इसके अलावा जो कश्मीर से आज ट्रैफिक वापस आ रहा था श्री अमरनाथ यात्रा का, तो वो भी रामबन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरकर जम्मू की तरफ जा रहा है, जबकि कश्मीर वाला ट्रैफिक आज तकरीबन दोपहर से पहले 12 बजे से पहले उसे कश्मीर की तरफ निकाला गया था। इस दौरान जो ट्रैफिक है आज थोड़ा कम गाड़ियां थी आज की यात्रा में शामिल, जो आज जम्मू से कश्मीर के लिए 46 गाड़ियां थी, तो उसमें जो ट्रैफिक को निकालने जल्दी टाइम में निकाला गया, तो उसके बाद 11 बजे के आसपास जो आज ट्रैफिक को काजीगुंड टनल से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई और ट्रकों को भी बाद में कश्मीर से एक तरफा ट्रैफिक में चलाया जाता है, ट्रकों को, तो ये ट्रैफिक जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, जबकि 7 बजे के बाद से सुबह जम्मू के नगरोटा से ट्रैफिक को कश्मीर की तरफ आने की इजाजत दी गई है और ये ट्रैफिक अभी चल रहा है। अभी जो श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए ये खबर है कि ये अपडेट है कि जो 3 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को जो श्री अमरनाथ यात्रा की है यात्रियों पर मुश्तमिल हो या टूरिस्ट पर मुश्तमिल हो, उन्हें बानहाल काजीगुंड टनल क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें बानहाल में ही लांबर ग्राउंड में रुकाया जाता है रात के कयाम के लिए, उनको खाने पीने का रहने का पूरा इंतजाम है वहां पर। इसी तरह 2 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को यहाँ इस तरफ बानहाल और कश्मीर की तरफ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसमें यात्री हो या टूरिस्ट हो, उन्हें चंद्रकूट में रोका गया है यात्री निवास में, तो वहां उनको कायम कराया जाएगा और कल सुबह उन्हें बाजाबता जो सिक्योरिटी बंदोबस्त होता है जो आरोपी होते हैं उसकी मौजूदगी में इन्हें कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा।
0: जी तस्कीन साहब, आपने इस हम ये कहेंगे कि विस्तृत जानकारी जो है आपने दी इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन बानिहाल से, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी जानकारी जो है हमारे साथ साझा की और ये बताया कि 3 बजे के बाद बानिहाल टनल या काजीगुंड क्रॉस करने की जो है अनुमति नहीं दी जाती है जो कि जम्मू से श्रीनगर के लिए आ रहे हैं, चाहे वो यात्री हो या दूसरे टूरिस्ट हों। और यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि वही श्रीनगर से अगर जम्मू की ओर रवाना हो रहे हैं हमारे यात्री, तो उनको 2 बजे के बाद जो है टनल पार करने की इजाज़त नहीं मिलती है, उन्हें ऐसी अनुमति नहीं मिलती है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे प्रथम आधार शिविर भगवती नगर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जावेद मेहराब की रिपोर्ट।
3: अमरनाथ जी यात्रा का पर्व पहले निवास स्थान भगवती नगर में श्रावण के सोमवार को पूजा अर्चनाओं का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के मंदिरों, धर्म स्थलों में सुबह सवेरे से ही स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी तांता बंधा हुआ है। खासतौर पर पंचवक्तार मंदिर, पीरखो मंदिर, रंबेश्वर मंदिर में पूरे दिन श्रद्धालु, स्थानीय लोग फूलों के अभिषेक करते हुए नजर आए। आज सुबह तड़के जैसे ही श्रद्धालुओं का जत्था जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी की ओर रवाना हुआ। यहाँ कल जाने वाले जत्थे की तैयारियाँ भी शुरू हो गई। यहाँ निवास स्थान में आज भी तमाम तरह के प्रबंधन, सुविधाएं, बिजली पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कर्मचारी, प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएँ पूरी तरह से लगी हुई हैं, जिससे तीर्थयात्रा का जोश जज्बे के साथ लगातार रवाना होना जारी है।

जयकारों और उसी जोश खरोश के साथ बालटाल के मार्ग से होते हुए बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ ये काफिला यहाँ से बखूबी सुखद तरीके से रवाना भी हुआ और वक्त पर पहुँच भी गया। इस तरह से यहाँ यात्रा का यह पर्व लगातार अपने जोश खरोश के साथ बना हुआ है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा जो है उसमें 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर पैदल चलना पड़ता है। यात्रियों को ज़्यादा ऊंचाई पर होने वाली बीमारी, जिन्हें हाई अल्टीट्यूड सिकनेस भी कहा जाता है, ये हो सकती हैं, जिसके लक्षण ये हैं कि भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर घूमना, नींद न आना, दृष्टि में परेशानी, ब्लैडर या आंतों की समस्या, शरीर के अंगों के तालमेल में कमी, शरीर के एक तरफ सुन्न हो जाना, धीरे धीरे होश खोना और मानसिक स्थिति में बदलाव होना, या हम कहेंगे कि सुस्ती होना, छाती में जकड़न या बारीपन, तेज़ी से सांस आना या तेज़ी से सांस लेना और दिल की धड़कन बढ़ना। अगर ज़्यादा ऊंचाई पर, हम ये कहेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पर होने वाली इस बीमारी का एक समय पर इलाज जो है वो बहुत ही अवश्य बन जाता है, अनिवार्य बन जाता है। और इन ऊंचाई वाली जगहों पर, इन क्षेत्रों पर होने वाली बीमारियां, जिन्हें हाई अल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है, इनसे बचने के लिए क्या करें, बताएंगे आपको इस वचन के उस पार।

श्रोताओं सुन रहे हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण, और इसमें हम बात कर रहे हैं।

हैं। जैसा कि हमने बताया भी कि श्री अमरनाथ जी के इस पवित्र गुफा की यात्रा जो है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और यात्रियों को ज़्यादातर पद यात्रा जो है करनी पड़ती है, और वहाँ पर जाकर कई ऐसे यात्री होते हैं जिन्हें हाई आल्टीट्यूड सिकनेस जो है हो सकती है। इसके लिए आपको बता दें कि क्या ज़्यादा ऊंचाई पर होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए आप क्या ना करें। ज़्यादा ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, जो कि हमने आपको पहले ही ये लक्षण बताए कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और इनको नज़रअंदाज जो है अनदेखा नहीं करना है। कोई भी नशे वाली चीज़ ना पिए, कैफीन वाली ड्रिंक ना लें और धूम्रपान भी ना करें। अगर आपको ऊंचाई की बीमारी हो गई है तो और ऊपर ना जाएं, इसके बजाय जो है तुरंत नीचे ऐसी ऊंचाई पर आ जाएं जहां आपका शरीर वहां के माहौल के हिसाब से डल सके। और बीमार अगर कोई यात्री हो जाता है तो उनकी हर बात ना माने, क्योंकि बीमारी की वजह से उनके सोचने समझने की क्षमता पर असर भी जो है हो सकता है। और अब आपको बता दें कि ऊंचाई वाली जगहों पर होने वाली बीमारी हाई आल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, यानी यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट रहें। यात्रा से कम एक महीना पहले जो है रोज़ाना सुबह या शाम को 4 से 5 किलोमीटर टहलने की आप आदत डालें। शरीर में ऑक्सीजन के इस्तेमाल की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए गहरी सांसें लें और वो शुरू करें, वो कसरत जो है शुरू कर दें, और योग खासकर प्राणायाम जो है शुरू कर दें। और अगर आपको पहले से कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और ऊपर चढ़ते समय धीरे धीरे चलें और शरीर को ऊंचाई के माहौल के अनुकूल होने के लिए समय दें। श्रोताओं, आपको बता दें कि खड़ी चढ़ाई पर थोड़ी देर आराम करें, अपनी सामान्य क्षमता से ज़्यादा जोर ना लगाएं। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और डिहाइड्रेशन और सरदर्द से बचने के लिए खूब सारा पानी पिएं। रोज़ाना लगभग 5 लीटर तरल पदार्थ ज़रूर लें। थकान कम करने और ब्लड शुगर का स्तर जो है कम होने से बचने के लिए भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें। अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन रखें, क्योंकि अगर आपको कोई सांस की तकलीफ है या सांस लेने में कहीं पर भी आपको तकलीफ हो, और तब तकलीफ होने पर ये जो है आपकी मदद, ये पोर्टेबल ऑक्सीजन से आपकी मदद हो सकती है। अगर ऊंचाई वाली बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दे देते हैं तो श्रोताओं, तब तुरंत नीचे की ओर यानी कि कम ऊंचाई वाली जगह पर आ जाएं। अगर कुछ हफ्ते पहले ज़रूरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है आपकी सेहत में अब कोई बदलाव आया है तो यात्रा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ऊंचाई वाली बीमारी या किसी और तरह की तकलीफ के लक्षण देखने पर रास्ते में मौजूद नज़दीकी मेडिकल सुविधा जो रखी गई है, मेडिकल सुविधा केंद्र से तुरंत आप संपर्क करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यात्रा के दौरान काफ़ी

यात्रा में जो है ऊनी कपड़े आप साथ रखें, क्योंकि तापमान कभी कभी अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी गिर सकता है। छाता, विंड चीटर, रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते साथ रखें, क्योंकि यात्रा वाले क्षेत्र में मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। अपने कपड़े और खाने पीने की चीज़ें एक अच्छे वाटरप्रूफ बैग में रखें ताकि वे भीग न जाएं, और आपातकालीन स्थिति के लिए अपनी जेब में एक पर्ची रखें जिस पर आपके साथ उसी तारीख को दर्शन के लिए जा रहे किसी यात्री का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हो। यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और यात्रा परमिट जो है, जिनमें से जो भी आपके पास है वो साथ रखें। समूह में यात्रा करें और अपना सामान उठाने के लिए पोर्टर, घोड़े या टट्टू भी जो है उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये पक्का करें कि समूह के सभी लोग आपकी नज़र के सामने रहें ताकि आप अपने समूह से अलग ना हो, और लौटते समय अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ ही बेस कैंप से निकलें। अगर आपके समूह का कोई सदस्य, जी हाँ, अगर आपके समूह का कोई भी सदस्य खो जाता है तो तुरंत पुलिस की मदद लें। साथ ही यात्रा कैंप में पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर घोषणा भी करवाएं। अपने साथ यात्रा कर रहे जो साथी यात्री हैं उन यात्रियों की मदद करें और पवित्र मन से यात्रा करें। यात्रा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें, और किसी भी मदद के लिए SASB कैंप डायरेक्टर या नज़दीकी यात्रा कंट्रोल रूम से संपर्क आप कर सकते हैं। किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में तुरंत नज़दीकी कैंप डायरेक्टर या अलग अलग जगहों पर तैनात माउंटेन रेस्क्यू टीम से संपर्क आप कर सकते हैं। पूरी यात्रा के दौरान लंगर में मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है, और दूसरे यहाँ पर ये कहेंगे कि दूसरे राज्यों के प्रीपेड सिम कार्ड्स भी जो हैं J&K और यात्रा वाले इलाके में काम नहीं करते हैं। यात्री बालटाल और नुनवन के बेस कैंप और भगवती नगर, जम्मू और लखनपुर में पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स जो हैं खरीद सकते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, हम ये कहेंगे कि आकाश भगवान सूर्य के अभिन्न अंग हैं, इसलिए पर्यावरण का सम्मान करें और यात्रा वाले इलाके को प्रदूषित करने वाला कोई काम आप ना करें।

राष्ट्रीय यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और अब हम तो आपको बता रहे थे कि यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, जिनमें और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे, वो ये कि महिला यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान साड़ी ना पहने, उनके लिए ये जो है बताया गया है सलवार कमीज पैंट शर्ट या ट्रैक सूट पहनना बेहतर है। और 6 हफ्ते से ज़्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा करने की इजाज़त नहीं होती है। और 13 साल से कम उम्र के बच्चों और 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। चेतावनी वाले बोर्ड या नोटिस वाली जगहों पर ना रुकें, सिर्फ तय रास्ते पर ही जो है आप चलें। और कभी भी नंगे पैर ना चलें और ना ही बिना ऊनी कपड़ों के रहें, क्योंकि यात्रा वाले क्षेत्र में तापमान कम रहता है और तेज़ी से बदलता भी रहता है। चप्पल भी ना पहने, क्योंकि पवित्र गुफा तक के रास्ते में कई जगहों पर चढ़ाई और ढलान है। सिर्फ फीते यानी कि लेस वाले ट्रैकिंग जूते ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट लेने भी ना लें, उसकी कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें, ऐसा करने से आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कोई काम ना करें जिससे प्रदूषण जो है वो फैले या इलाके के पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। और अपने साथ कोई भी पॉलिथीन का सामान ना लाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसके इस्तेमाल पर रोक है और ये कानूनन अपराध भी है। श्रोताओं, पवित्र गुफा में दर्शन करते समय शिवलिंग पर सिक्के, नोट, सजावटी चुनरी, पीतल के लोटे या कोई और चीज़ ना फेंकें। ज़्यादा ऊंचाई और ख़राब और बदलते मौसम को देखते हुए पवित्र गुफा में रात न बिताएं। यात्रा से जुड़ी कोई भी सवाल होने पर या आपको अगर कोई परेशानी है, समस्या है, तो कृपया जो है आप, हम कुछ नंबर्स आपको बता रहे हैं जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं। 0191-250-3399, 0191-250-3399, और ये श्रीनगर के लिए था। और जम्मू के लिए 0194-2313-146 यानी 0194-231-3146। और टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए हैं जम्मू और श्रीनगर के लिए, वो है 1800-180-7198 7 और 1800-180-7199 यानी 1800-180-71987 1800-180-71999।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप ये जो है इस सिलसिले में सुन रहे हैं। और ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। और बाबा के भक्तों के लिए हम कहें कि ये सावन का महीना जो है चल रहा है और आज सावन का सोमवार है, और सावन का सोमवार बहुत ही महत्व रखता है। ये दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है, जो उनके प्रिय पवित्र महीने यानी कि सावन में आता है। ये समय अधिकतम विकास व्रत रखने और ईश्वर की कृपा पाने का होता है। आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व जो है इसका, भगवान शिव जी की कृपा सोमवार का दिन भगवान शिव जी के लिए पवित्र माना जाता है। और इन दिनों पूजा अर्चना करने से गहरी अधिकतम हम ये कहेंगे कि आध्यात्मिक शक्ति और शांति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार इसी महीने में समुद्र और समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव जी ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पी लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था, यानी फिर नीलकंठ भी जिसे कहा जाता है। जल चढ़ाने से उन्हें शीतलता मिलती है। माता पार्वती जी की भक्ति जो है, देवी पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए सावन में व्रत रखे थे, जो अविवाहित महिलाओं को एक आदर्श जीवन साथी पाने के लिए व्रत रखने की प्रेरणा भी देता है। मुख्य तौर से हम ये कहेंगे कि मुख्य रीति रिवाज और परंपराएं जो है वो ये हैं कि जल अभिषेक यानी पवित्र जल, दूध, दही, शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, और पवित्र चढ़ावा जो है उसमें बेलपत्र, सफ़ेद फूल और चंदन का लेप चढ़ाना भी शामिल होता है। और व्रत की बात करें तो व्रत जो है दिन भर का व्रत रखना इसमें आ जाता है, और ओम नमः शिवाय का जाप करना और सूर्यास्त के बाद केवल सात्विक या फल आधारित भोजन करना।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप उसका प्रसारण सुन रहे हैं और इसमें हम आपको बता दें कि आज 2 बजे तक की अगर बात करें तो 2 बजे तक कुल मिलाकर 6,394 तीर्थ यात्रियों ने जो है बाबा भोले के दर्शन आज 2 बजे तक किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 4,756, महिलाएं 1,174, बालक 94, साधु 23, साध्वी 6, ट्रांसजेंडर 3 और सुरक्षा कर्मचारी 338। यूँ कुल मिलाकर ये आंकड़ा बन जाता है 6,394 आज 2 बजे तक जिन बाबा के भक्तों को बाबा के द्वार पर जाने का सौभाग्य जो है प्राप्त हुआ है।

जी श्रोताओ, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आप सुन रहे हैं। और अगर आप बालताल के मार्ग पर सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अगर हम पहलगाम के मार्ग पर सुन रहे हैं तो 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन पा रहे हैं, और आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR पर भी जो है हम उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ हम प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आपसे जुड़े हुए हैं। और अभी आपको बता दें कि 3 बजे तक कुल मिलाकर 7171 तीर्थयात्रियों को बाबा भोलेनाथ के द्वार पर जाने की, हाजिरी देने की, वहाँ पर दर्शन प्राप्त करने की जो है सौभाग्य मिला है, जिनमें पुरुषों की संख्या 5336, महिलाएं 1334, बालक 106, साधु 33, साध्वी 14, ट्रांसजेंडर 5 और सुरक्षाकर्मी 343। यूँ कुल मिलाकर ये आंकड़ा बन जाता है आज 3 बजे तक

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है देखने को मिले, और अगर यात्रा ट्रैक की बात करें तो वहाँ पर भी ये मौसम जो है काफ़ी बदलता रहा। लेकिन ये है कि ट्रांजिट कैंप्स को यात्रियों की सुविधा के लिए ही शुरू किया गया है, और प्रशासन पूरी तरह से इसी प्रयास में है कि किसी भी तरह की असुविधा यात्रा या यात्रियों को ना हो, यात्रा की सुरक्षा को और बेहतर

बनाने के लिए जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जो बहुत ही अच्छी तरह से अपना कर्तव्य जो है वह निभा रहे हैं, कर रहे हैं। और विशेष रूप से नगर पालिका कर्मचारियों की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, तो जीरो वेस्ट का प्रबंध भी किया गया है, सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखा गया है, और पवित्र गुफा के आसपास और यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखा गया है। हर छोटी बड़ी बात जो भी यात्रा से जुड़ी है उसको ध्यान में रखा गया है, और तभी जाके यात्रा की व्यवस्थाएं की गई हैं, और विशेष रूप से मौसमी बदलाव को जो है ध्यान में रखा गया है, और तभी व्यवस्थाएं जो है वैसे ही की गई हैं। इनसे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं ताकि यात्रा सुखद और सुरक्षित रूप से किसी भी बाधा के बगैर चलती रहे। मौसमी बदलाव तो होते ही रहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र है और श्रावण का महीना है, तो इस महीने में काफ़ी सारे मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर, ये भी बताना चाहेंगे विशेष रूप से आप सबको कि यात्रा को लेकर ये यात्री जो हैं इन व्यवस्थाओं से बहुत ही प्रसन्न हैं। यहाँ पर आपको ये कहेंगे कि विशेष रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी विशेष तौर से जो है विशेष इस यात्रा की व्यवस्था पर विशेष रूप से अपनी दृष्टि जो है बनाए रखे हुए हैं, और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और आपसे भी यही निवेदन, और आपसे भी यही निवेदन कि आप भी अपनी पूरी यात्रा में प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि आपकी यात्रा सुखद तरह से चलती रहे और किसी भी बाधा का सामना आपको ना हो, कोई भी असुविधा आपको यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर ना हो और इस यात्रा के दौरान ना हो। और ये भी है कि बम बम भोले के नाम का जाप जपते हुए यात्रा जो है आगे जा रही है, और वहाँ से दर्शन यात्री जो है दर्शन करने के बाद लौट भी रहे हैं, और ये यात्रा जो है बहुत ही सुखद तरीके से और सुरक्षित तरीके से चल रही है। और हमारी भी यही कामना, यही प्रार्थना और यही प्रयास भी कि ये यात्रा बहुत ही सुखद तरीके से अपने समापन को पहुंचे।

0: श्रोताओं, जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा का आज जो है 26वां जत्था जम्मू भगवती नगर से यानी कि प्रथम आधार शिविर से घाटी की ओर उसे प्रस्थान कराया गया और हमें मिली जानकारी के अनुसार अभी जो है 450,000 का आंकड़ा पार हो चुका है जिन श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन पाने का सौभाग्य पाया है और ये दर्शन सतही समंदर से 15,000 से ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर दर्शन जो है इन श्रद्धालुओं ने किए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र गुफा में हाजिरी देकर इस पवित्र यात्रा के बाद पवित्रता हासिल करने में सक्षम रहे हों। वही श्रोताओं, जो यात्री आज जो श्रद्धालु अभी दर्शन करने वाले हैं, जो बहुत ही उत्सुक हैं कि बाबा के द्वार पर जाएं और वहाँ पर हाजिरी दे, एक अलग तरह की उत्सुकता रहती है जाने के बाद भी, यहाँ जाने से पहले भी और वहाँ वापस से लौटते समय भी बहुत ही उत्सुकता रहती है। और हम यही आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये यात्रा सुखद रहे, आरामदायक रहे, सुरक्षित रहे और सफलतापूर्वक रहे। और हम श्री अमरनाथ जी के इस विशेष प्रसारण द्वारा क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यहाँ पर एक और सूचना, यहाँ पर एक और जानकारी जो है आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि आज 5 बजे तक की अगर बात करें तो 5 बजे तक कुल मिलाकर एक हम ये कहें कि 5 बजे तक कुल मिलाकर 7,477 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर पर आज सुबह से आज सांझ पाँच बजे तक जो है हाजिरी दी है और दर्शन पाने का सौभाग्य जो है उनको मिला है।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
0: श्रोताओ, अब सुनते हैं बालताल में रिकॉर्ड की गई आरती और आनंद लेते हैं इस आरती का।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती पते।

प्रणामी दामोर। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप इस वक्त विशेष प्रसारण जो है सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ा। और अब आपको बता दें कि आज प्रातः भगवती नगर से कुल मिलाकर 1056 तीर्थयात्रियों को वादी की ओर प्रस्थान कराया गया 46 छोटे बड़े वाहनों में, और इनमें पुरुषों की संख्या 832, महिलाएं 205, बालक 2, साधु 15 और साध्वी 2, जो कुल मिलाकर आज प्रातः 1056 तीर्थयात्रियों को घाटी की ओर रवाना कर दिया गया। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारे आज की ये सभा समापन को पहुंचती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे साथी इंजीनियर्स समीर अहमद भट्ट और नज़ीर अहमद मीर और सहायक मोहम्मद सलीम, और मैं आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम, और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री गुलाम रसूल आखून, श्री वसीम फारूक वानी। प्रातः 6:53 पर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: आज हम आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले चल रहे हैं जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक समृद्धि से भी ओतप्रोत है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह मास न केवल भक्ति भाव से भरा होता है, बल्कि इसकी हर बूंद में भक्ति की सरिता बहती है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खासकर सोमवार के दिन शिवजी की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है, जिसमें शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। सावन मास में जब प्रकृति भी हरियाली ओढ़कर शिव की आराधना में लीन होती है, तब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र स्थल हमारी आस्था को और भी प्रबल कर देते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर, जिसकी गाथा महादेव की करुणा और भक्ति से जुड़ी हुई है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बाबा वैद्यनाथ भी कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जो प्रमुख कथा है, वह लंकेश रावण से संबंधित है। यह कथा भगवान शिव के अपने भक्तों के प्रति करुणा और धर्म की मर्यादा का संदेश देती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बिहार और झारखंड की सीमा के निकट झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। देवघर का अर्थ ही है देवताओं का घर। यहाँ का वातावरण शिव भक्ति में रमा रहता है। हर सुबह यहाँ की गलियों से बोल बम के जयकारे सुनाई देते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। देवघर चारों ओर से हरियाली, छोटी छोटी पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ है। जनश्रुति और लोकमान्यता के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को शिव के वैद्य रूप का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने अपनी भक्ति सिद्ध करने हेतु अपने 10 सिर अर्पित कर दिए थे और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें जोड़ दिया, इसलिए शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजित हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष है जो रोगों से मुक्ति चाहते हैं, जीवन में शांति और ऊर्जा की तलाश में हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। वैद्यनाथ धाम केवल पूजा और परंपराओं का स्थान नहीं, यह आध्यात्मिक साधना और वैराग्य का भी केंद्र है। सदियों से यहाँ साधु संतों का जमावड़ा होता रहा है। यहाँ का वातावरण व्यक्ति को आत्ममंथन और मन की शुद्धि के लिए प्रेरित करता है। भक्त यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं। आज वैद्यनाथ मंदिर का स्वरूप अत्यंत सुंदर और सुव्यवस्थित है। यहाँ पर बासुकीनाथ मंदिर की भी बड़ी मान्यता है, जो पास ही स्थित है, और कहा जाता है कि वहाँ बिना दर्शन वैद्यनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे, रोपवे, धर्मशालाएं, होटल्स, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं विकसित की गई हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम स्टेशन से मंदिर तक सुंदर मार्ग और संकेतक बनाए गए हैं। श्रोताओं, वैद्यनाथ धाम न केवल ज्योतिर्लिंगों में एक है, बल्कि यह मानव और महादेव के रिश्ते का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आकर लगता है जैसे शरीर, मन और आत्मा तीनों का उपचार हो रहा हो। बाबा वैद्यनाथ सबको आरोग्यता, शांति और सिद्धि प्रदान करें।
0: ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम में अभी आप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में सुन रहे थे।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनु स्वरूप छे एवं जगदवंद्य चरणारविंद थी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारू आपत्तियों रक्षण करो, रक्षण करो।

सिंह ऊपर विराजिला, मस्तक ऊपर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओथी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित, मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोराथी, अने रणकार करता झांझरथी शोभता, रत्नथी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता, हमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश करो।

0: ಕಾಗದ ಕಾಗದ ಬನುವಾಯೋ.
1: ಅಂತರ ಚೀರು ಕಾಗದ.

mano vayo, ante retiro cagada, mano vayo, apanito.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।